0: श्रोताओं, कबीर साहब एक अटल सत्य हमारे सामने रखते हैं। कबीर यहू तन जात हैं, यह जो तुम्हारा शरीर है यह लगातार तुम्हारे हाथ से छूट रहा है, यह मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन कबीर निराश नहीं करते, वे आगे कहते हैं, सके तो ठाहर लाए, इसे किसी ठाहर यानी सही ठिकाने पर लगा दो, इसका कोई सार्थक उपयोग कर लो। इसे सही ठिकाने लगाने के कबीर ने दो रास्ते बताए हैं। कै सेवा करी साध की, या तो इस शरीर को साधु यानी संतों सत्पुरुषों और समाज की निस्वार्थ सेवा में लगा दो, दूसरों के दुखों को दूर करने में इस देह का उपयोग करो। कै गोविंद गुण गाए, या फिर इस जुबान से इस चेतना से उस गोविंद के उस परमेश्वर के गुणों का गान करो, उस आत्मज्ञान को खोजने में अपनी ऊर्जा लगाओ। अगर इसे उच्च दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह दोहा कर्मयोग और भक्तियोग का एक सुंदर संगम है। कबीर जानते हैं कि यह भौतिक शरीर नश्वर है, पर इसके माध्यम से किए गए कार्य और जगाई गई चेतना अमर होती है। ठाहर लगाने का अर्थ है कि अपनी ऊर्जा को वासनाओं और प्रपंचों में बहने से रोककर उसे ऊर्ध्वमुखी बनाना। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार गलता है, और जब हम गोविंद के गुण गाते हैं तो हमारी चेतना उस अनंत सत्ता में विलीन होने लगती है। यही इस नश्वर देह से शाश्वत को पा लेने का विज्ञान है। जो इस रहस्य को समझ लेता है उसका शरीर मिटकर भी अमर हो जाता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा रुक कर अपने इस तन को देखिए। हम अपनी इस ऊर्जा को, अपनी सांसों को किन चीजों में खर्च कर रहे हैं? व्यर्थ की चिंताओं में, नफरत में, या सिर्फ भोग विलास में? याद रखिए, जब रास्ते इस बर्फ के बिना किसी उपयोग के पिघला देने जैसे हैं, आज कोशिश कीजिए अपने इस जीवन को किसी ठाहर पर लगाने की। अपने हाथों को किसी की सेवा के लिए बढ़ाइए और अपने मन को उस भीतरी परमात्मा के ध्यान में लगाइए। जब आप सेवा और सुमिरन को जीवन का आधार बना लेते हैं तो मृत्यु आपके शरीर को तो मिटा सकती है, लेकिन आपके भीतर के आनंद को कभी छू नहीं सकती। समय रहते जाग जाइए और इस अनमोल देह को सार्थक बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए
1: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हर्ट टचिंग।
2: तू या बठ्ठा जग मातील लाख लाख जीव जंतुस्थायी जनावरेस्थायी न्यारा, या तूवर कोणा उपकार कोणास नाही। तूवर येणारी आफत मरण आणि रोगराई हो कोणा सराप कोणास नाही। हाई सबन शिरिष्टीना शेतो जलमजात कायदा, न्यारा न्यारा बारीक बोरी गोया बेरीज सरमिसय मातून करम करांना बाजत, त्या मै जे चालत येस ते पहिला थाई रास उज्जय, चांगला वांगलाना ठसाना रास टाईम ठरेल। या खरा थाई तू अनभग कशासाठी, तुना मेंदूनी हालचाल न्यारी काब, अरे काबू पही राहना खरा थाई दूर लोटी राहना तूस तुले खाईमा बेमालूम। तुनी हुशारी लंगडी हुईगी, तू ताकतवाला अशी संभी गुलाम बन गया तू। घाबरी गया आप थिसले, घाबरी गया झगडासले, दिनात हात पाय गई दखीसनी मरण। तुले उमजदी तुनी ताकात, तुना मेंदू तुनी हुशारी अपुरीशे, तो मत बराबर तोंड देवा गुंता मरणशी भिडा गुंता दुख नापाय रे ललाय ना तू तुले तुना ठाव ठिकाणा पाला पाचोया मईक वाटाले लागना म्हणशीन आलत्या बलत्या ताकतीसना टेका धुंडासाठी तू पैना आणि पैज राहना तोमतीसताई झगडासताई भेव संघटली सनी गुस्सा खार आखो मतलब आणि मायाले सवताना संगे नाचाडत मन सारखं काहीच होत नाही म्हणशीन गुस्सा जागी करीसनी आपला सुकनाडे कोणीतरी राहिनं म्हणशीन इरा झाले आयसत मायसत आमायत कोमायत तू गले पती पै राहना वा जी पै राहना येडाना माईक ठाव ठिकाणा राही तदलांगे भविष्य मातल्या गोष्टीसले आमायत कोमायत सपन मातल्या उमेद थाई तू ना हुशारीले खल्ली समजीवन नाही तुना मधारच चिटकी बठेल दोस तू हुशारीवाला राहीसन मी तू हाकलात नाही ते असले बाहेर नाही कापी शिनी पेकात तू तुना मला लपी बठेल रोग तो होय ह्या रोग तुना मागेच लागणार लागो पाठ आयात बर तू पलगडी तिनले चांदण्या दखत गया रोग बरा वागुंता तुना येटाय म्हटला कोणीतरी दमटाडी सन बोंबली उठना मले समजन अरे मी बोली दाखडू या अहंकार मातीन तयार व्हायला लागणार न्यारा न्यारा विचार माणूस परत विचारस न लोंडा आणि न्यारा न्यारा मठ आणि पीठना गोसावड्यासले बी नाही उमगना या निसर्गांना खे आणि त्यानं बिगर भाड भिडणं बरं जाणं म्हणशीनी त्यासनी आदरी जांभली काढा तंतर मंतर गंडा दोर्रा आणि देवना सराप त्यासनी आपला फायदा नियमन करली ना आखो त्या संघट होतात त्या माणसेसना येटायाले शानावाद करी दिना त्या मयी जलमनं कुभाण त्या मयी मौरेऊनी पुंजापत्री त्या मयी मौरेऊनात तोंड चोपड्या भाट आणि जलमनात भाटगिरी ऐकणारा बी माणूसले गुंडावणारी बुद्धीले आंधी करणारी वाट बैजबरी ताकात वान वत गई आणि माणूसना अंगणी जनावरेसारखी दशा जाई एक दुसऱ्याले पायखुटी घालणारेस ना कयम जलमनात माणूस माणूस मा फरक करानी दवंडी पिटायनी माणूस माणूस मा अंतर भलं मोठं वद्य आप मतलबीपणा कावराई घ्या सुख भोगासाठी येडा होई घ्या माणूसनं मन सतरा वयन थाई नाहीच भरायनं वद्य वाईट ताबा सुटेल ना माईक कथांमाथा माणुसकी राग धराले लागणी माणूसवरे असा करतूत ना पायरे दिखाले माणूसनं चलिंतर जनावरेसना माईक इचार राक्षसना असाले माणूस म्हणशात का गले पते करम
3: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग आपलं खानदेश आपली माणसं
4: गीताई अध्याय 3 कर्मयोग अर्जुन म्हणाला बुद्धिकर्मा हुनी थोर मानिसी तू जनार्दना मग कर्मात का घोर घालिसी मज केशवा मिश्र बोलो निबुद्धिस जनू मोहात टाकिसी जाने मी श्रेय पावेन सांगते एक निश्चित श्री भगवान म्हणाले दुहेरी ह्या जगी निष्ठा पूर्वी मी बोलिलो असे ज्ञानानी सांख्य जी पावे योगी कर्म करुणिया न कर्मारंभ टाळूनी लाभे नैष्कर्म्यते कधी संन्यासाच्या क्रियेनेची कोणी सिद्धी न मेळवी कर्मावी न कधी कोणी न राहे क्षणमात्रही प्रकृतीच्या गुणी सारे बांधिले करितातची इंद्रिये करिती कर्म मूढ त्यास चिरोधुनी राहतो भोग चिंतुनी तो मिथ्याचार बोलिला जो इंद्रिये मनाने ती नेमुनी त्यास राबवी कर्मयोगात निसंग तो विशेष चिमानिला नेमिले तू करी कर्म करणे हे चिथोरकी तुझी शरीर यात्रा ही कर्मावी न घडेचिना यज्ञार्थ कर्म सोडुनी लोक हा बांधिला असे यज्ञार्थ आचरी कर्म अर्जुना मुक्त संगतु पूर्वी प्रजे सवे ब्रह्मा यज्ञ निर्मोनी बोलिला पावा उत्कर्ष यज्ञाने हा तुम्हा काम धेनुची रक्षा देवास यज्ञाने तुम्हा रक्षोत देवते एकमेकांस रक्षूनी पावा कल्याण सर्वही यज्ञतुष्ट तुम्हा देव भोग देतील वांछित त्यांचे त्यास न देता जो खायतो एक चोरची यज्ञात उरले खाती संतते दोष जाळिती रांधिती आपुल्यासाठी पापी ते पाप भक्षिती अन्नापासुनिही भूते पर्जन्यातूनि अन्नते यज्ञे पर्जन्यतो होय यज्ञकर्मा मुळे घडे प्रकृतीपासूनि कर्म ब्रह्मी प्रकृती राहिली ऐसे व्यापकते ब्रह्म यज्ञात भरले सदा प्रेरिले हे असे चक्र ह्या लोकी जो न चालवी इंद्रिया सक्त तो पापी व्यर्थ जीवन घालवी परी आत्म्यात जो खेळे आत्मा भोगो नितृप्त जो आत्म्या मध्ये जी संतुष्ट त्याचे कर्तव्य संपले केल्याने वा न केल्याने त्यास भावार्थ सारखा कोणामध्ये कुठे त्याचा न काही लोभ गुंतला म्हणून नित्य निस्संग करी कर्तव्य कर्म तू निस्संग करिता कर्म कैवल्य पद पावतो कर्मद्वाराची सिद्धी सपावले जनकादिक करी तू कर्म लक्षूने लोकसंग्रह धर्म ही जे जे आचरितो श्रेष्ठ ते तेची दुसरे जन तो मान्य करितो जे जे लोक चालवितात ते करावे मिळवावे से नसे काही जरी मज तिन्ही लोकी तरी पार्था कर्मी मी वागतो चिकी मीची कर्मी न वागे न जरी आळस झाडुनी सर्वथा लोक घेतील माझे वर्तन ते मग सोडी न मी जरी कर्म नष्ट होतील लोक हे होईन संकर द्वारा मीची घातास कारण गुंतूनी करिती अज्ञ ज्ञात्याने मोकळेपणे करावे कर्म तैसेची इच्छूनी लोकसंग्रह कोणत्या कर्मनिष्ठांचा बुद्धिभेद करू नये नेण त्या कर्मनिष्ठांचा बुद्धिभेद करू नये गोडी कर्मात लावावी समत्वे आचरुणीति कर्मे होतात ही सारी प्रकृतीच्या गुणांमुळे अहंकार बळे मूढ करता मी हेची घेतसे गुण हे आणि ही कर्मे ह्याहुनि वेगळाची मी जाणे तत्वज्ञ गुंते ना गुणात गुणवागता गुंतले गुणकर्मी जे भुलले प्रकृती गुणे त्या अल्प जाणणारांस सर्वज्ञे चाळवू नये मज अध्यात्म वृत्तीने सर्व कर्मे समर्पुणी फलाशा ममता सर्व सोडूनी झुंजतु सुखे माझे शासन हे नित्य जे निर्मत्सर पाळिती श्रद्धेने नेण तेही तोडिती कर्मबंधने परी मत्सर बुद्धीने जे हे शासन मोडिती ज्ञानशून्यचिते मूढ पावले नाश जानतु ज्ञानी ही वागतो त्याच्या स्वभावास धरुणिया स्वभाव वशही भूते बलात्कार निरर्थक इंद्रियी सेविता अर्थ राग द्वेष उभे तिथे वश होऊ नये त्यास ते मार्गातील चोरची उनाही आपुला धर्म परधर्माहुनी बरा स्वधर्मात भला मृत्यू परधर्म भयंकर अर्जुन म्हणाला मनुष्य करितो पाप कोणाचा प्रेरणेमुळे आपुली नसता इच्छा वेठी सधरला जसा। श्री भगवान म्हणाले।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 91.8 FM, ऑलवेज हैड टचिंग।
1: रेडियो 91.8 FM, ऑलवेज हैड टचिंग।

0: हाय श्रोताओं, कबीर साहब एक अटल सत्य हमारे सामने रखते हैं। कबीर यहू तन जात हैं, यह जो तुम्हारा शरीर है, यह लगातार तुम्हारे हाथ से छूट रहा है, यह मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन कबीर निराश नहीं करते, वे आगे कहते हैं, सके तो ठहर लाए, इसे किसी ठहर यानी सही ठिकाने पर लगा दो, इसका कोई सार्थक उपयोग कर लो। इसे सही ठिकाने लगाने के कबीर ने दो रास्ते बताए हैं। कै सेवा करी साध की, या तो इस शरीर को साधु यानी संतों, सत्पुरुषों और समाज की निस्वार्थ सेवा में लगा दो, दूसरों के दुखों को दूर करने में इस देह का उपयोग करो। कै गोविंद गुण गाए, या फिर इस जुबान से, इस चेतना से उस गोविंद के, उस परमेश्वर के गुणों का गान करो, उस आत्मज्ञान को खोजने में अपनी ऊर्जा लगाओ। अगर इसे उच्च दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह दोहा कर्मयोग और भक्तियोग का एक सुंदर संगम है। कबीर जानते हैं कि यह भौतिक शरीर नश्वर है, पर इसके माध्यम से किए गए कार्य और जगाई गई चेतना अमर होती है। ठाहर लगाने का अर्थ है कि अपनी ऊर्जा को वासनाओं और प्रपंचों में बहने से रोककर उसे ऊर्ध्वमुखी बनाना। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार गलता है, और जब हम गोविंद के गुण गाते हैं तो हमारी चेतना उस अनंत सत्ता में विलीन होने लगती है। यही इस नश्वर देह से शाश्वत को पा लेने का विज्ञान है। जो इस रहस्य को समझ लेता है उसका शरीर मिटकर भी अमर हो जाता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा रुक कर अपने इस तन को देखिए। हम अपनी इस ऊर्जा को, अपनी सांसों को किन चीज़ों में खर्च कर रहे हैं? व्यर्थ की चिंताओं में, नफरत में, या सिर्फ भोग विलास में? याद रखिए, जब रास्ते इस बर्फ के बिना किसी उपयोग के पिघला देने जैसे हैं, आज कोशिश कीजिए अपने इस जीवन को किसी ठहर पर लगाने की। अपने हाथों को किसी की सेवा के लिए बढ़ाइए और अपने मन को उस भीतरी परमात्मा के ध्यान में लगाइए। जब आप सेवा और सुमिरन को जीवन का आधार बना लेते हैं तो मृत्यु आपके शरीर को तो मिटा सकती है, लेकिन आपके भीतर के आनंद को कभी छू नहीं सकती। समय रहते जाग जाइए और इस अनमोल देह को सार्थक बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए
1: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हर्ट टचिंग।
2: तू या बठ्ठा जग मातील लाख लाख जीव जंतुस्थायी जनावरेस्थायी न्यारा, या तुवर कोणा उपकार कोणास नाही। तुवर येणारी आफत मरण आणि रोगराई हौ कोणा सराप कोणास नाही। हाई सबन शिरिष्टीना शेतो जलमजात कायदा, न्यारा न्यारा बारीक बोरी गोया बेरीज सर मिसय मातून करम करना बाजत, त्यामुळे जे चालत येस ते पहिला थाई रास उज्जय, चांगला वांगलाना ठसाना रास टाईम ठरेल। या खरा थाई तू अनभग कशासाठे, तुना मेंदूनी हालचाल न्यारी काब, अरे काबू पही राहना खरा थाई दूर, लोटी राहना तूच तुले खाईमा बेमालूम। तुनी हुशारी लंगडी हुईगी, तू ताकतवाला अशी संबी गुलाम बनी गया, तू घाबरी गया आप थिसले, घाबरी गया झगडासले, दिनात हात पाय गई दखीसनी मरण। तुले उमजदी तुनी ताकात, तुना मेंदू तुनी हुशारी अपुरीशे, तो मत बराबर तोंड देवा गुंता मरणशी भिडा गुंता दुख ना पाय रे ललाय ना तू तुले तुना ठाव ठिकाणा पाला पाचोया मईक वाटाले लागना म्हणशीन आलत्या बलत्या ताकतीसना टेका धुंडासाठी तू पैना आणि पैज राहना तोमतीसताई झगडासताई भेव संघटली सनी गुस्सा खार आखो मतलब आणि मायाले सवताना संगे नाचाडत मन सारखं काहीच होत नाही म्हणशीन गुस्सा जागी करीसनी आपला सुकनाडे कोणीतरी राहणं म्हणशीन इरा झाले आयसत मायसत आमायत कोमायत तू गले पती पै राहणा वा जी पै राहणा येडाना माईक ठाव ठिकाणा राही तद लांगे भविष्य मातल्या गोष्टीसले आमायत कोमायत सपन मातल्या उमेद थाई तुना हुशारीले खल्ली समजीवन नाही तुना मधारच चिटकी बठेल दोस तू हुशारीवाला राहीसन मी तू हाकलात नाही ते असले बाहेर नाही कापी शिनी पेकात तू तुना मला लपी बठेल रोग तो वय ह्या रोग तुना मागेच लागणार लागो पहाट आयात भर तू पलगडी दिले चांदण्या दखत गया रोग बरा व्हावा गुंता तुना येटाय मातला कोणीतरी दमटाडी सन बोंबली उठना माले समजन अरे मी बोली दाखडू या अहंकार मातीन तयार व्हायला लागणार न्यारा न्यारा विचार माणूस परत विचारच न लोंडा आणि न्यारा न्यारा मठ आणि पीठना गोसावड्यासले वी नाही उमगना या निसर्गांना खे आणि त्यानं बिगर भाड भिडणं बरं जाणं म्हणशीनी त्यासनी आदरी जांभली काढात तंतर मंतर गंडा दोर्रा आणि देवना सराप त्यासनी आपला फायदा नियमन करली ना आखो त्या संघट होतात त्या माणशेसना येटायाले शानावाद करी दिना त्यामयी जलमनं कुभाण त्यामयी मौरेऊनी पुंजापत्री त्यामयी मौरेऊनात तोंड चोपड्या भाट आणि जलमनात भाटगिरी ऐकणारा बी माणूसले गुंडावणारी बुद्धीले आंधी करणारी वाट बैजबरी ताकातवान वत गई आणि माणूसना अंगणी जनावरेसारखी दशा जाई एक दुसऱ्याले पायखुटी घालणारेसना कयम जलमनात माणूस माणूस मा फरक करानी दवंडी पिटायनी माणूस माणूस मा अंतर भलं मोठं वद्य आप मतलबीपणा कावराई घ्या सुख भोगासाठी येडा होई घ्या माणूसनं मन सतरा वयन थाई नाहीच भरायनं वद्य वाईट ताबा सुटेल ना माईक कथांमाथा माणुसकी राग धराले लागणी माणूस वरे असा करतूत ना पायरे दिखाले माणूसनं चलिंतर जनावरेसना माईक इचार राक्षसना असाले माणूस म्हणशात का गलेपते कर
3: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग आपलं खानदेश आपली माणसं
4: गीताई अध्याय 3 कर्मयोग अर्जुन म्हणाला बुद्धि कर्मा हुनी थोर मानिसी तू जनार्दना मग कर्मात का घोर घालिसी मज केशवा मिश्र बोलो निबुद्धिस जनु मोहात टाकिसी जाने मी श्रेय पावेन सांगते एक निश्चित श्री भगवान म्हणाले दुहेरी ह्या जगी निष्ठा पूर्वी मी बोलिलो असे ज्ञानाने सांख्य जी पावे योगी कर्म करुणिया न कर्मारंभ टाळूनी लाभे नैष्कर्म्यते कधी संन्यासाच्या क्रियेनेची कोणी सिद्धी न मेळवी कर्मावी न कधी कोणी न राहे क्षणमात्रही प्रकृतीच्या गुणी सारे बांधिले करितातची इंद्रिये करिती कर्म मूढ त्यास चिरोधुनी राहतो भोग चिंतुनी तो मिथ्याचार बोलिला जो इंद्रिये मनाने ती नेमुनी त्यास राभवी कर्मयोगात निस्संग तो विशेष चिमानिला नेमिले तू करी कर्म करणे हे चिथोरकी तुझी शरीर यात्रा ही कर्मावी न घडेचिना यज्ञार्थ कर्म सोडुनी लोक हा बांधिला असे यज्ञार्थ आचरी कर्म अर्जुना मुक्त संगतु पूर्वी प्रजे सवे ब्रह्मा यज्ञ निर्मोनी बोलिला पावा उत्कर्ष यज्ञाने हा तुम्हा काम धेनुची रक्षा देवास यज्ञाने तुम्हा रक्षोत देवते एकमेकांस रक्षूनी पावा कल्याण सर्वही यज्ञ तुष्ट तुम्हा देव भोग देतील वांछित त्यांचे त्यास न देता जो खायतो एक चोरची यज्ञात उरले खाती संतते दोष जाळिती रांधिती आपुल्यासाठी पापी ते पाप भक्षिती अन्नापासुनिही भूते पर्जन्यातूनि अन्नते यज्ञे पर्जन्यतो होय यज्ञकर्मा मुळे घडे प्रकृतीपासूनि कर्म ब्रह्मी प्रकृती राहिली ऐसे व्यापकते ब्रह्म यज्ञात भरले सदा प्रेरिले हे असे चक्र ह्या लोकी जो न चालवी इंद्रिया सक्त तो पापी व्यर्थ जीवन घालवी परी आत्म्यात जो खेळे आत्मा भोगोनी तृप्त जो आत्म्यामधेच संतुष्ट त्याचे कर्तव्य संपले केल्याने वा न केल्याने त्यास भावार्थ सारखा कोणामध्ये कुठे त्याचा न काही लोभ गुंतला म्हणून नित्य निस्संग करी कर्तव्य कर्म तू निस्संग करिता कर्म कैबल्य पद पावतो कर्मद्वाराचि सिद्धी सपावले जनकादिक करी तू कर्म लक्षूने लोक संग्रह धर्म ही जे जे आचरितो श्रेष्ठ तेची दुसरे जन तो मान्य करितो जे जे लोक चाल वितात ते करावे मिळवावे से नसे काही जरी मज तिन्ही लोकी तरी पार्था कर्मी मी वागतो चिकी मीचि कर्मी न वागे न जरी आळस झाडुनी सर्वथा लोक घेतील माझे वर्तनते मग सोडी न मी जरी कर्म नष्ट होतील लोक हे होईन संकर द्वारा मीची घातास कारण गुंतूनी करिती अज्ञ ज्ञात्याने मोकळेपणे करावे कर्म तैसेची इच्छूनी लोक संग्रह कोणत्या कर्मनिष्ठांचा बुद्धिभेद करू नये नेण त्या कर्मनिष्ठांचा बुद्धिभेद करू नये गोडी कर्मात लावावी समत्वे आचरुणिती कर्मे होतात ही सारी प्रकृतीच्या गुणांमुळे अहंकार बळे मूढ करता मी हेची घेतसे गुण हे आणि ही कर्मे ह्याहुनी वेगळाची मी जाणे तत्वज्ञ गुंते ना गुणात गुणवागता गुंतले गुणकर्मी जे भुलले प्रकृती गुणे त्या अल्प जाणणारांस सर्वज्ञे चाळवू नये मज अध्यात्मवृत्तीने सर्व कर्मे समर्पुणी फलाशा ममता सर्व सोडूनी झुंजतु सुखे माझे शासन हे नित्य जे निर्मत्सर पाळिती श्रद्धेने नेण तेही तोडिती कर्म बंधने परी मत्सर बुद्धीने जे हे शासन मोडिती ज्ञान शून्यचिते मूढ पावले नाश जानतु ज्ञानी ही वागतो त्याच्या स्वभावास धरुणिया स्वभाव वशही भूते बलात्कार निरर्थक इंद्रियी सेविता अर्थ राग द्वेष उभे तिथे वश होऊ नये त्यास ते मार्गातील चोरची उनाही आपुला धर्म परधर्माहुनी बरा स्वधर्मात भला मृत्यू परधर्म भयंकर अर्जुन म्हणाला मनुष्य करितो पाप कोणाचा प्रेरणे मुळे आपुली नसता इच्छा वेठी सधरला जसा। श्री भगवान म्हणाले।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो मन भावन 90.8 FM, always had touching.
1: रेडियो मन भावन 90.8 FM, always had touching.